वाके गुरु वाके गुरु वाके गुरु जी बोलो वाके गुरु वाके गुरु वाके गुरु जी बोलो सत्य नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए।

बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे है मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल।